0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कई ना हो का
1: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
0: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: अहँ हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली हुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुस्ता रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आदि था, कहा कना हो कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई। कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहीं आनल झोला दस का टस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अव्यापी खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के सहायक स्टेशन मैनेजर ईश्वर साउथे मातृशोक। टिकापुरमा तोल भेला शुरू, वार्ड नम्बर 102 करोड़ 61 लाख के योजना छन्। टिकापुरमा अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन, असफल काम के निरन्तरता केल नै हुक क्रमभंगता कर पर्ना, प्रतिनिधि सभा के सभामुख दोल प्रसाद अर्याल के कहाए। ओसुर पश्चिममा कांग्रेस विवाद से टुक्रायल, असन्तुष्ट पक्ष हुक्र दुई मन्त्री एक राज्य मन्त्री। सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के सहायक स्टेशन मैनेजर ईश्वर साउथे मातृशोक परलबा। साउथ के 73 वर्ष के दाई गंगा साउथ के काली बेलुका के 8:30 बजे निधन हुलक हो। वहां के समेत आज आसाम के कैलाश्वर स्थित तिरखुमा समेत बगरमा अंतिम संस्कार करना बतागिल बा। यी दुखद घड़ीमा सहकर्मी ईश्वर साउत लगायत के परिवारजनमा धैर्य धारण करना शक्ति मिलोस कहती स्वर्गीय दाईप्रति सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करती बा। टिकापुर नगरपालिका के आर्थिक वर्ष 2083-84 में संचालन हुन वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनौट करना टोल भेला शुरू कर गिलवा। शनिचर के टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 ज्योतिनगर और टिकापुर के कन्या आधारभूत विद्यालय में करके दुई ठाव में भेला कर गिलवा। भेला में वार्ड नम्बर 1 के वाड़ा सचिव चक्र बहादुर रावल से ऐना वर्षा के लाख के एक नम्बर वाड़ा से 2,61,51,000 के सिलिंग पायल बटोले बाटी। प्राप्त बजेट मध्य के पूर्वाधार विकास और 54% के दर से हुना एल्बा कलसे एमना 1,41,22,000 और आर्थिक विकास और 20% से हुना ऐना 52,30,000, सामाजिक विकास और 20% की दर से 52,30,000, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन और 3% के दर से 7,84,000 और संस्थागत तथा सुशासन और 3% के दर से 7,84,000 योजना छन्न लागिल बटोले बाटे। भेलामा आयल नागरिकहरूका वाड़ा के काम प्रगति प्रति समेत मिश्रित प्रतिक्रिया देखि रहल बाटे। भेलामा उपस्थित कमल बहादुर बटाला फे समेत ओसक राधा कृष्ण मन्दिर ब्लक नम्बर 9 मा समेत बिहान के 7:30 बजे हो ओसक दोपहर के साईमाट आगे सार्वजनिक चौक ब्लक नम्बर 25 में भेला करके थप योजना छन्ती रहल बटवागिलबा। वाड़ाध्यक्ष मोहन बिका के अध्यक्षता में शुरू हुलक भेला स्वागत टिकापुर नगर पालिका वार्ड नम्बर 1 के वाड़ा सदस्य गणेश घरती मगर से स्वागत मंतव्य धरल रह। सुदूरपश्चिम प्रदेश में सरकार भित्र नेपाली कांग्रेस में देखगिल शक्ति संघर्ष, अन्तत सहमति मार्फत समेत टुंग्यागिल्बा। सहमति संगे मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहके सांसदीय दलके नेता तथा मुख्यमन्त्री पदमनसे हे निरन्तरता पैना हुइल्बा। स्रोत अनुसार समेत शाह विरूद्धके सक्रिय असन्तुष्ट पक्ष हुक्रा सरकार हे दुई मन्त्री हो एक राज्य मन्त्री के जिम्मेवारी देना साझेदारी हुइल्बा कलसे मुख्यमन्त्री पक्षके ओरसे प्रमुख सचेतक विक्रम धामी, बहादुर सिंह थापा, प्रकाश बम वार्ता के नेतृत्व समेत करना कहल बाटे। हाल सुदूरपश्चिम सरकार में कांग्रेस के भाग में मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्री और 2 राज्य मंत्री लौ सहमति अनुसार असंतुष्ट पक्ष से 2 मंत्री और 1 राज्य मंत्री पैनाबा कलसे मुख्यमंत्री सहित 1 मंत्री और 1 राज्य मंत्री शाह के पक्ष में रहल बाटे। यद्यपि कोनो मंत्रालय कोई पैना कहना विषय में अंतिम निर्णय भर अधिकार मुख्यमन्त्री शाहमै रहन सहमति हुइल वार्ता स्रोतसे बतागिल्बा। खोजखरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फेरसे सुन्तिरवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर एक को टोल भेला संचालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर एक को आर्थिक वर्ष 2083-84 मा संचालन हुने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनौट सम्बन्धी भेला तफसील अनुसार हुने भएकोले सम्बन्धित गाउँ टोल र ब्लकका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। ब्लक नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25 छेगरखैला र बनगाउँका तीनै पूर्वाको लागि भेला हुने स्थान साईमार्ट अगाडिको सार्वजनिक चोक ब्लक नम्बर 25 जेठ 24 गते दिउँसो 2:30 बजे टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वडा कार्यालय।
2: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना। जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 प्रदान गरेका सेवा, सम्पन्न गरेका काम, योजना र वडा कार्यालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा सार्वजनिक सुनवाई हुने भएकोले तपाईँका गुनासा, प्रश्न वा सुझाव सहित तफसिलको मिति, स्थान र समयमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरोकारवालाहरू, सेवाग्राहीहरू, गैर सरकारी संस्था, वर्गर, नागरिक समाज, युवा, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल जेठ 26 गते, समय 2:30 बजे, स्थान सुवर्णपुर स्थित कृषि भवन, जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय सुवर्णपुर।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। कैलालकी टीकापुरमा अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन 2 दिनसम्म चल्ती बा। प्रतिनिधि सभा के प्रमुख डोल प्रसाद अर्याल, सांसद ओ सरकार के काम करबेर निरन्तरता, सफे समेत क्रम भंगता करते आगे बढ़े पर्ना बटोले बाट अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन 2083 के समीचर के टीकापुर में उद्घाटन करलक सभामुख अर्याल ऐसी बटोले खुए। सभामुख अर्याल से विगत के निर्णय कार्यान्वयन हुईल नहीं हुईल समीक्षा करके क्रम भंगता बजाई पर्ना बटोले बाट वहां संघीय सांसद के सक्कु समेत बैठकमा सभामुख उपसभामुख उपस्थित हुन कार्यक्रम से समेत नतिजा देह पर्न ओ एकर देहल उपलब्धि नागरिक हुक्रा थाहा पाई पर्न कहलबा। सभामुख अर्याल से संविधान के 3 तह के सरकार बीच समन्वय, सहकार्य, सह अस्तित्व के परिकल्पना करल जस्ते राष्ट्रिय फे आगे बढ़ना आगे पुस्ता के अनुभव, बलिदानी के सम्मान करती जेन्जी पुस्ता के भावना है संबोधन करके आगे बढ़ेना आज के आवश्यकता रहल बटोले बाट। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल या आगे सम्मेलन से करलक घोषणा में संघीय प्रदेश व्यवस्थापिका से कर निश्चितला काम स्थानीय व्यवस्थापिका से छुटलक बाटमा समीक्षा हुई पर्ना बटोले बाट। सुदूरपश्चिम के टीकापुर में शुरू हुईलक 11 अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा संघीय सांसद के सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मधेश प्रदेश बाहेक के समेत प्रदेश के सभा के सभामुख उपसभामुख सुदूरपश्चिम प्रदेश के सभा के सदस्य संघ प्रदेश व्यवस्थापिका सचिव हुक्रन के सहसचिव सुदूरपश्चिम स्थित के समेत सुरक्षा संयंत्र के प्रमुख सहभागिता जनाएल बाट संघीयता समेत कार्यान्वयन केलाक संघीय सांसद प्रदेश सभाबीचके प्रभावकारी समन्वय सहयोग सहकार्य और सहअस्तित्व के लाग शुरू हुईना सम्मेलन दुई दिन चलती आज समापन हुईना सभामुख भीमबहादुर भण्डारी जानकारी दिलेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालय के व्यवस्थापन और अन्तर व्यवस्थापिका मंच के आयोजनामा सम्मेलन हुईके हो। सम्मेलन दुई दिन चलना बतवागिल्बा। जानकी गांवपालिका के 18 गांव सभा विफेक दिन से शुरू हुई बा। गांव सभा के पहल बैठक में जानकी गांवपालिका के आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम में स्वीकृत कर गिल बा। गांव सभा के शून्य समय में बोलना सदस्य हुकरा आपन क्षेत्र में बजट के माग कर बाट जानकी गांवपालिका के सभा के सदस्य हुकरा आपन क्षेत्र के विकास के लाख बजट के माग कर गांवपालिका के 18 गांव सभा के विफेक दिन बैठल पहल बैठक से शून्य समय में बोलना गांव सभा के सदस्य माग धरल बाटे। गांव सभा सदस्य भीमबहादुर चौधरी से फे असीन माग करलक हो। भीमबहादुर चौधरी जस्ते बलिराम थारू फे अपन वाड़ा में जैना डगरा बनाई पर्ना मोतीनगर के डगरा करपत्र हो। 7 नंबर वाड़ा कार्यालय के लाख बजेट व्यवस्था करे पर्ना माग करल बाटे। उसक गमक्का लदियामा तटबन्धन सहित जहाँ पुल निर्माण करना आगामी आर्थिक वर्ष के बजेटमा व्यवस्था गरेपना गाउँसभा सदस्य खगेन्द्र विश्वकर्मा के माग रहल बाटिन। उसक गाउँसभा सदस्य हरिलाल चौधरी फे शून्य समयमा बोल्टी आपन क्षेत्रमा सड़क करेपत्र माग गर्न बाटे। गाउँसभा सदस्य चित्र कुमारी कठरियासे निजी शिक्षक हुकरन सेवा सुविधा के विषयमा बात उठागिल बा। गांवसभा सदस्य खगेन्द्र भण्डारी से शिक्षक उपकरण के व्यवस्थापन में समस्या हुई रलकर्से आगे नई व्यवस्थापन के विषय में छलफल करके आगे काम बढ़ागिलक सुझाव दिले बाटे। 18 गांवसभा के पहल बैठक में उठल प्रश्न तथा जिज्ञासा के जवाब गांवसभा के समेत असार 5 गते बैठना दोसरो बैठक में जवाब देना व्यवस्था मिलाए। गांवसभा अध्यक्ष गणेश चौधरी जानकारी दिले बाटे। 18 गांव सभा के पहल बैठक जानकी गांवपालिका से आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत करल बा। कैलाली के टीकापुर के 11 थू सामुदायिक विद्यालय में स्टीम एजुकेशन अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू करल बा। टीकापुर नगरपालिका के सहयोग तथा दारी ज्ञान के समन्वय में कर्णाली मावी टीकापुरमा कार्यक्रम शुरू करलक हो। कार्यक्रममा विद्यार्थी उपकरण आधुनिक प्रविधि व्यावहारिक शिक्षा वैज्ञानिक खोज ओर समेत आकर्षित गर्न उद्देश्य से आयोजना करगिल दारी ज्ञान के सरोज चपाई जानकारी दिले बाटे। कार्यक्रममा दुई मुख्य विधा ओ समेत विज्ञ प्रशिक्षक हुकरा समेत सिखैना कहलबा। कार्यक्रम से धेर प्रभावित ओ समेत प्रविधि मैत्री बनैना दुई फरक समेत विधामा समेत स्थापित एवं अनुभवी प्रशिक्षक हुकरन से

0: 71024 ओ 98046 77417।
1: विश्राम पासे फिर से स्वागत बा। दूषित खाद्य वस्तु के कारण विश्वभर के हरेक वर्ष करीब 60 करोड़ मई बिराम पर्ना तथ्यांक सार्वजनिक करल बा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार खाद्यजन्य रोग के कारण वार्षिक करीब 4,20,000 जन के मौत हुई रहल बा। इस संदर्भ में सुरक्षित खाद्य वस्तु के महत्व के बारे में जनचेतना अभिवृद्धि करना आज विश्व के तमाम भाग में विविध कार्यक्रम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाई बाटे। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा से सन 2018 के एक प्रस्ताव पारित करती जून सात है समेत विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में घोषणा कर अनुसार सन 2011 से लेकर विश्वभर ई दिवस मनाई रहल बा। दिवस के प्रावर्धन तथा समन्वय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संघीयता खाद्य तथा कृषि संगठन से समेत संयुक्त रूप में करते आयल बा। पर्याप्त मात्रा में समेत सुरक्षित पोषणयुक्त खाद्य वस्तु में समेत पहुंच मानव जीवन और समेत स्वास्थ्य सामग्री के कल्याण के लग अपरिहार्य मान गिल बा। दूषित खाना व समेत पानी मार्फत शरीर में प्रवेश करना बैक्टीरिया भाइरस प्राजीवी रासायनिक पदार्थ के कारण तमाम खाद्यजन्य रोग फैलती रहल बा। इसे जोखिम में समेत रलकोर से प्राय नंग आंखी से देखे नहीं सकना रलकोर से खाद्य वस्तु है समेत अभिन्न चुनौतीपूर्ण रूप में हेती रहल बता गिल बा। उपलो वायुमंडल में रहल पश्चिमी न्यून चापीय रेखा तथा स्थानीय वायु के आंशिक प्रभाव रलकोर से तमाम क्षेत्र में मौसम बदलना संभावना बा। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल लुम्बिनी कर्णाली और पश्चिम प्रदेश सहित के देश के अधिकांश जिला तथा पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना बा। कलसे तराई में आंशिक बदलना बा। बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली और पश्चिम प्रदेश में एक दो स्थान में मेघगर्जन सहित हल्का पानी पड़ती रहल बा। कलसे दोपहर के कोसी प्रदेश देश के हिमाली भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना बा। कलसे मध्य प्रदेश सहित बाकी भूभाग में आंशिक बदलना बतागिल बा। कलसे तराई भाग में भर मुख्यतया मौसम सफा रहना अनुमान करगिल बा। उपराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बीच शनिचर की नया दिल्ली में द्विपक्षीय भेटवार्ता हुई बा। नेपाल भारत संबंध के विविध आयाम में केन्द्रित होके वार्ता में व्यापार में समेत आर्थिक सहकार्य उसका सीमा पार संपर्क संजाल समेत ऊर्जा साझेदारी जल स्रोत व्यवस्थापन तथा जनस्तर के समेत संबंध विषय में विस्तृत समेत छलफल हुलक नेपाली दूतावास दिल्ली स्थित से जनागिल बा। राजदूत से जारी कर रख प्रेस विज्ञप्ति अनुसार दोनों देश के मंत्री नेपाल भारत के संबंध में समग्र अवस्था के बारे में समीक्षा करती दुई देश बीच के दीर्घकालीन समझदारी है थप सुदृढ़ बनेना प्रतिबद्धता व्यक्त कर बाटे। यह समाचार संगे खोज खबर वायल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM के सहायक स्टेशन मैनेजर ईश्वर साउथ है मातृशो। टीकापुर के टोल भेला टीकापुर में शुरू वार्ड नंबर 1 से 2 करोड़ 61 लाख की योजना छंटी। टीकापुर में अंतर व्यवस्थापिका सम्मेलन आज काम के असफल काम के निरंतरता नहीं हो के क्रम भंगता करे पड़ना प्रतिनिधि सभा के सभामुख दोल प्रसाद अरियाल के कहा पश्चिम में कांग्रेस विवाद तुंगेल असंतुष्ट पक्ष है दुई मंत्री और एक राज्य मंत्री। लिजा बकलत थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM सुनते विराम।

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुई देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: जेले हेद दिदै बालाई लोटरी पड्यो भने के बैंकको विवरण दिया पैसा खातामी आइ जान्छ भन्यो।
3: धैदै बा, तुमले लोटरी भर्राइ थ्या अब?
4: आछिन क्या हो रे चेली, लोटरी पड्या त निको हो बा।
3: कभै नभर्या लोटरी कसरी पड्न्छ बा? इशा मेसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, भाइबर काइमीले आयाले कबै जनपतिया, फोनै आयाला गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया। कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड, पिन आदि कबैले माग्दैन, यो त बैंक आफैले नै माग्दैन। सतर्क रहौ, ठगी बटे बचौ। सिद्धार्थ बैंक पठै जनहितमी जारी सन्देश।
5: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँ भरिलाई। ए माया, तिमी कति राम्रो नि, तिमी अघि अघि, म पछि पछि।

0: काचो नौली म आफ्ना बैरागले गाउँछु
1: काटे सागो चुनक चुनक जुत्ता भड्कुनाले मेरा ताई पराया भया।

0: मेरा बादल आकाश आउँदो चट्याङ चुट्टुङ झरी मेरा जै था दुख कहीं नहीं सारा त्यस्तै भरी
1: आधार स्वर्ग छम्पानी छ आधार स्वर्ग विदो मैले बाँच्ने

0: यादे मुस्कट औरत आज हेरोट बुढ़वा
1: उहट हेर बुढ़िया बरखाक समय थे बा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसवा आयल कला से आबो मुसक खुशी सब अफे आइ सकता
0: ओहो मोनिका सब समझनो सरक आंदर पादर जफास थे बाहर से कत्था का तहिल बा काट पर ना रहो
1: हां असि करी हेर बुढ़िया वो सिन्हो कला से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका कर बासी खाई दूसरा सर परियार मने मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तनी हुई
0: हुई था वो बुढ़वा असिन डाला मदर ध्यान घास पोहर सफाई भी था मा काप नुक्का बैठल रह सकता ना
1: वो हो से तक कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर थे सांप मुस्कुचू के पैठनी सेकना में चबरदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई से साफ पहना का उस्तह कम हो जाए
0: कल शनिश्चर थे हो ज्ञान का फुसत थे बा
2: साफ बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिला कोर से सुखा ठाम का खोजी में होकर बाहर निष्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साप मानव बस्ती लघ आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: तर कान्छा खालाको बिहाको न्युज आएको छ कसो त जाने विचार छ कि नै त
7: आफ्ना कान्छा भाइको बिहे नगरिकन पन भएन जाउँ भने भुवाको मंगलसूत्र बन भाँची गयो
6: यतिकै लागि त सामुएल ज्वेलर्स बनेको बरु अहिले जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याटै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
7: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो त बाई जाउँ
8: सामुएल ज्वेलर्स सुनसादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनसादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 9868-1208 9846-39261

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन युभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टिकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रलको से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुकरन यह सूचना से जानकारी कराई थी। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टिकापुर कैलाली।

0: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिकल झोला है, मरमत करा जाए। एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
1: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
2: बाबू, ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
2: वह मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था। वही तोर समस्या फैल अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सेकी जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नै हुईबी भ्रष्टाचार करुया मनै न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।
2: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
3: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
2: पढाइ हुने विषयहरू
4: अनिवार्य नेपाली,
2: अनिवार्य अंग्रेजी,
4: सामाजिक गणित,
2: ऐच्छिक लेखाशास्त्र,
4: ऐच्छिक वित्तशास्त्र,
2: ऐच्छिक अर्थशास्त्र,
4: कम्प्युटर विज्ञान,
2: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
4: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
2: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
4: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
2: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
3: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
5: समस्या त नहीं
6: कुछ नहीं मिल सर टॉयलेट के 15 तक वर्क न सर लग के घूम रहते हो जैसे चेयर सर लग में तो हटा नहीं कर मॉल सपो का के था पहले तो पहले जाके
5: मॉल सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
6: नहीं चलेना सर
5: विद्यार्थी भैया बापू मित्रा मेरा से कह रहा हूँ मॉल सपो डेवो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से भी वाकर मरहल 20 असर नहीं करा खाना नहीं हो जीती हाँ मॉल सपो मॉल डेफ करना सपो है ना
7: मुलक कुछ बेर बासे संकी सपवा दस सिठा संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी।
8: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पता लगे लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर चेक दिठा।
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली हुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुस्ता रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
3: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमराफारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98485518128
6: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
7: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
6: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
7: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि
6: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
7: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसनका गर गहनाहरू पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगल साइनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98684147999 98246025 अछाम मंगल साइनका लागि रूप सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98246728225

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं रहे।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर भर रही थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था?
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे। वहाँ झिंगला दीदी कटरा से गुर झोला अनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में। रट गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ल झोला है मरम्मत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: आइबो बड्डो घर कहिया से जइबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26
3: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान रिथाई घरक भिटा आमी निके निउराइ छौ कि का खेतो बस्ता खारन कलाक मिनी लै जाय पर्ना रह
1: आबो ओराइदा जान्ते बादा
2: ले ले वही मिनी बना कर नहीं दिया तू लै जा दियस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भिटा मत बिला को बा माथी से सब दिए पर का हाँ सब दियो अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ बादल छाई
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल
2: अरे ले हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान बट सब का डरलस ले हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपवा करलस कल
3: ना क्या काकी तो मुस्कान न्या क्या का स्थान थो तो बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास का ना सुटाई हल सब निकल रखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो ता
1: बैठा
3: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप सांसर बना रही ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकर कटला हाथ भर नहीं चलाखना
2: बैठा भैया सबो कटला ठाउ आंजर पांजर चिर कर इंजेक्शन ले तान का अथवा मुंह ले चूस कर बीस को निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबो कटला घाव आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई तो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से झर मेरा लान खा वही निटा खा वाकर सबो कटला ठाम और लगा दी उठा नाना।

0: लिच स्नेक बाइट नेपाल .org वेबसाइट फेर खुलत। हमार गाउँ से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में सर्पदंश उपचार कैजना रहे हो वहां लै जाए पड़ मुस्कान होना।
1: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रमेश नानू आ गई
0: लेव लेव लेव काकी मुस्कान होना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केन्द्र में पुगाई सीख जाए कल से मुस्कान होना बताई सीख जाए
1: बैठा बैठा याद करी सपा दस लसे मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र में जाख जान बचाई वहां कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगा कर फोन में से सुझाव ली
2: मोटरसाइकिल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के का समझन साथ काट से संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डाक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखा सकल से हुक्र सपो विषहार अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
1: यदि समय में उपचार कर सकल से सपो डसलक मने यहाँ बताई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दिखा सपो डसलक मने यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जा डाली यही ऊ मने एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पर्ना वो सही जानकारी लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैसा पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए से दिखा।
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
4: ए रुक रुक रुक
5: के भयो किन कराएको यस्तो
4: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
6: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
5: हो र
4: हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
7: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123 हास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
8: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन्छ भाउ के पाउँछ त्यहाँ
9: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
10: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
11: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
8: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ
12: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस
10: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस
13: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
12: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484648673 र 98164860204

0: ट्राफिक कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बर रही थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहा से लन बो वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: चेली हेदी दे बालाई लोटी पड़े बड़े क्या बैंक को विवरण दिया पैसा खाता में आए जान बड़े धोई दे बा तुमने लोटी भर रही थी अब
4: आती ना क्या हो रही चेली लोटरी पड़े तो निको हो
3: कभी न भरिया लोटी कसरी पड़े सब बा ईशा मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर कायमीले आयाले कबै जनपतिया फोने आयाला गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहित में जारी संदेश
5: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
6: परिवारमा सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकला सुकाए हुन्छ र कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
7: होइन चाइनिजो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ तलाई
6: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको छ त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
7: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमा मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
8: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
9: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकरला रोड टिकापुर कैलाली
10: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
11: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
10: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
11: मेरो खुत्रुके छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि
10: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
11: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
12: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिना रसनका गरगहनाहरू पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगल सैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98688147979 98247025 अछाम मंगल सैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98247825

0: फुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा के उस तबाटी गतिलो ठाव से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
4: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
5: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
3: डेलिभरीका लागि
5: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
3: टीकापुर कैलाली
6: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98017106772
4: स्वास्थ्यका लागि पानी
7: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
8: असार 6 गते पहिलो शनिबार
7: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रायसिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
9: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
8: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
7: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 98688008 र 98253777772
10: बैंकले कभैलाई कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन यदि कसैले कसै माध्यम बटियाईलाई तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तमलाई ठग्दो खोज्याछ सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरू उनीहरू विवरण मागी भर बैंकमी सोधौं सतर्क गरौं ठगी बटिए बचौं
11: सिद्धार्थ बैंक बटियाई जनहितमी जारी सन्देश
12: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सदैभरिलाई।

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैसे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुई देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी बुवा जा आगिली ना अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आन्छे कि कत्रा सुगर बनाएका ल बाटी
1: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: वृद्धा हराएको सूचना। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर एक नयाँ टीकापुरका 92 वर्षीय नवराज गिरी दाह्री पालेका, कपाल छोटो, पहेलो जकेट र लुङ्गी लगाएको, हातमा लट्ठी र कमण्डलु बोकेका, काँधमा झोला भिरेर यही जेठ 21 गतेका दिन बिहान 7:30 बजेतिर घरबाट बजार जान्छु भनी अटोरिक्सा चढेर निस्किनु भएको र टीकापुर शिव मन्दिर पुगी फर्किने क्रममा हराएकाले देख्नुहुने महानुभावले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा छोरा शिवराज गिरीको फोन नम्बर 9820-39-86-19 खबर गर्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकर्छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सक्कू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित तो सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कू जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।
2: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: राम ई लड़का के कब्बू कापी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कापी हरी थी, ना कबू पेंसिल हरी थी, ना झोला फाटल हुई थी, कही एक आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया। मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिकल झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

बिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल।

0: दाई बात बा कहाँ जाए लग दोटा
1: पेशाब लाता चर्पी जाए टुका
0: ए रुको ना तो कोशिश हो कल से मैं टॉर्च लाइट वो लट्ठी दे तू ले खजा वो
1: काजे चुनो लट्ठी वो टॉर्च लाइट
0: कहाँ करो रही दाई रात एक बाला बाहर निकल पड़ला से वाटवाइले जाए पड़ला से दहिया फिर टॉर्च लाइट बार खा वो लम्बा लट्ठी ले खजा ना जाए पड़ा कहाँ करो कि बरखा छेक बा सांप रहस्य था टॉर्च का अजराले सांपन दिया खसेक दी था वो लट्ठी ठेक ठेक आओ सुनकर साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूल मैडम सर मुख साप मुख से ना ठाव सी न्याग पड़ला से वो काम कर पड़ला से जहिया फेठा फुसियार भी पथा गई कर सिखेला बाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा ध्यान रा चलक ठाव में न्याग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठेक ठेक बजेटी न्याग पथा गई कर कल बाट
2: सात बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन परे था इस मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैठना पिलाकुर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
1: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई से था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकती था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश